कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

कल तक जेड़े कहंदे सीगे बाई बाई जिन्ना उत्ते लाती मैं जिन्नी भी कमाई कला बदलिया टाइम नहीं ओ यार वी आ बदले कालिया कावां ने काले कर दित्ते बगले देख देख देख देख, देख, देख, देख।

0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंकती है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Where cultures connect, CJMR 1320, the voice of the city.

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

पाओगी ये बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी। बहकने दे मन को और कितना समझाओगी, तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी। कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी, पीछे मुड़कर देखो तुम।

0: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
1: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
0: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ।

क्या हमारी किस्मत ने इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

0: voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: देखो
1: लावल जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं होनी। कुछ तेरिया ने, कुछ मेरिया ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना। तू कदे परछावे तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

0: से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.
2: इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले, आवाज मिटा दे देश परदेश की सारी